0: करते हैं आप नई मंदिर अभी।
1: ahead.
0: It's going to be Ryan Rumpel, 610-78.
1: Ten 33, 1088, status, not valid, suspended.